0: हमारे पास एक कन्फेशन है और उसके लिए हम मिस्ट्री कॉलर भी नहीं कहलाना चाहते हैं। वाह वाह वाह।
1: द सीक्रेट बॉक्स,
0: इसे कहते हैं द मैन विद सम गुर्दा ऑन हिम। सो आई एम गोइंग टू कॉल लक्ष्य, लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू माय सीक्रेट कॉलर और माय मिस्ट्री कॉलर। यू चूज द नेम बट द गेम रिमेन्स द सेम, कि मैं आपको नॉन जजमेंटल कानों से सुनूंगी मेरी जान। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB विद योर कन्फेशन। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE, और मेरे साथ लाइन पर लक्ष्य है। हेलो, हाय लक्ष्य, आपने मुझे पहचाना कैसे? लेकिन लेकिन आई कांट हियर योर वॉइस, इतनी माइल्ड है आपकी आवाज, थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे?
2: या मे बी देयर सम नेटवर्क इश्यू।
0: नेटवर्क नहीं है, आप धीरे बोलते हो।
2: नहीं नहीं, हाँ, नॉर्मल।
0: अब तो सही बोल रहे हो आप। क्यों इतने दुखी साउंड कर रहे हो, क्या हो गया आपकी जिंदगी में?
2: नहीं, दुखी ऐसा कुछ नहीं है, कि दुखी वाले सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली बस एक टाइप कन्फेशन था।
0: कन्फेशन? कन्फेशन सुनने के लिए तो मैं हमेशा बेकरार रहती हूँ। क्या कन्फेशन है?

0: का बताना जरा।
1: एक्चुअली आई एम स्टडिंग इन अ कॉलेज इन दिल्ली राइट नाउ।
0: हाँ
1: तो लास्ट ईयर जो मेरी क्लास में एक फ्रेंड है जिशा,
0: हाँ
1: तो उसकी बर्थडे पार्टी पे उसके घर पे गए थे, वहाँ पार्टी थी। तो जस्ट नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह हुए वहाँ पे। तो जब पार्टी ओवर होने वाली थी तो काफी लेट हो गया था, तो हम मैं दिशा थी और उसकी जो रिलेटिव आई थी शायद भाभी थी या वैसे कुछ थे उसके, तो हम वहीं पर स्टे कर गए उसके घर पे। तो हम सब एक्चुअली काफी ड्रंक हो गए थे उस टाइम पे, तो फिर वही उसकी भाभी और मैं थोड़ा कोजी हो गया।
0: और उसके बाद आई मीन इट्स नॉट फनी बट इट्स जस्ट लाइक मुझे लग रहा था कि यू विल हुक अप विद द गर्ल नॉट विद हर भाभी। पर उसके बाद डिड यू लाइक स्टे इन टच विद द भाभी या इट वाज जस्ट अ वन नाइट थिंग?
1: नो नो इट्स जस्ट लाइक अ वन नाइट स्टैंड।
0: नाइस, कैसा लगा आपको उसके बाद?
1: आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर मच बिकॉज़ वी वर ड्रंक,
0: हाँ
1: बट नेक्स्ट डे इट वाज आई फील वेरी एंबैरेसिंग
0: ओह
1: समथिंग
0: यू पुअर थिंग। आपको रोशिफाई कर दूं, विल इट मेक यू फील बेटर?
1: या आई मीन द रोशिफाई।
0: ओह हियर यू गो माय डार्लिंग।
2: यू हैव बीन रोशिफाइड।
1: ओके थैंक यू रोशी।
0: थैंक यू माई डार्लिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी विद योर इनक्रेडिबल कन्फेशन। इट्स क्रेजी AF। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

लॉर्ड, इस दुनिया को क्या होता जा रहा है? आई डोंट थिंक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एनीमोर. आपको पता है, एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से इन इंडिया, आई मीन एंड दिस सर्वे वाज रियली यंग पीपल, सो जेन ज़ीज लेके चलते हैं, उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते में 1.5 टाइम्स ऑफ गेटिंग नॉटी इज ऑल दैट दे नीड. बाकी के टाइम क्या कर रहे हैं? मतलब ये लोग किताबें तो पढ़ नहीं रहे हैं और ऐसे कोई पाथ ब्रेकिंग पिक्चरें भी नहीं बना रहे हैं, म्यूजिक सीन भी कोई खास बदल नहीं रहा है, तो व्हाट आर दीज पीपल डूइंग जो एक पूरे हफ्ते में दे आर ओके विद गेटिंग नॉटी 1.5? ये कैसी एवरेज है यार? तुम एक दिन में 3 बार खाना खाते हो, क्या हो गया इस दुनिया के रोमांस को? बट एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन देख के मुझे ऐसे लग रहा है दैट इफ वी आर नॉट वेरी फ्रेंडली अबाउट यूजिंग प्रोटेक्शन, वी मे एज वेल जस्ट नॉट गेट नॉटी, है ना? आपको नहीं लगता है? बट नाउ आई एम आस्किंग यू अ पर्सनल क्वेश्चन. आपके हिसाब से हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक डू यू गेट नॉटी? एंड टेल मी द आंसर टू दैट वन. आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो गो अहेड, हिट मी अप, टेल मी योर स्टैट्स, एंड कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोसाइटी में इतना हॉट बंदा आया है, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. मैं थोड़ी सी शाय टाइप ऑफ इंसान हूँ और हम यूजुअली वी बैंग इन टू ईच अदर या हमारे क्लब हाउस में या ऐसे कहीं पर भी, एंड हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं. लेकिन हाउ डू आई फ्लर्ट विद हिम बट कीप माई फ्लर्टिंग गेम सटल इनफ कि उसे ये ना लगे कि आई एम हिटिंग हिम ऑन द हेड विद द फ्लर्टिंग हैमर.
1: रोशी के डीएम से
0: कनिका ने ये मैसेज लिखकर भेजा. एंड कनिका, दैट्स अ टॉल ऑर्डर. यू आर लाइक, यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, फ्लर्ट करना है, लेकिन ऐसे भी फ्लर्ट नहीं करना है कि लगे कि भाई बंदी फ्लर्ट कर रही है. आई थिंक जस्ट टू अप योर फ्लर्टिंग टेक्निक, सबसे पहले तो यू शुड ट्राई एंड बिकम फ्रेंड्स विद उसके जो फ्रेंड्स हैं इन द सोसाइटी. दैट वे यू कैन गेट इन टू हिज इनर सर्कल विदाउट मेकिंग इट अपेरेंट कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो. सेकेंड, आई थिंक यू शुड ट्राई लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ प्लेफुल राइवलरी. मान लो कि वो क्रिकेट में एक पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट करता है, तो उसकी जो डायरेक्टली लाइक कंपेटिटिव ऑपोजिट है, आप उसे सपोर्ट करो, बिकॉज दैट काइंड ऑफ प्लेफुल राइवलरी बिकम्स रियली अमेजिंग. अगर वो इफ़ ही लाइक्स फुटबॉल, देन यू कैन डू लाइक यू नो फुटबॉल की अपोजिंग टीम्स. ऑल्सो वंस इन अ वाइल जब आप उसके साथ हैंग कर रहे हो ना, उसे मीडियम रेयर रोस्ट करो थोड़ा सा. लाइक इट डजंट मीन गो ऑल आउट एंड कुक हिम विद इंसल्ट्स, लेकिन जस्ट हल्का सा ना उसकी थोड़ी सी ट्रिप लो. ओके, गाइज काइंड ऑफ डिग दैट. एंड इवन एज अ गर्ल, इफ समवन डिड इट टू मी, आई वुड रियली फाइंड इट फैसिनेटिंग. एंड आई फील लाइक वंस इन अ वाइल, जैसे आप क्लब हाउस में मिले, जस्ट गो फॉर अ वॉक विद हिम. लाइक थोड़ा सा ना जस्ट अप योर फ्लर्टिंग टेक्निक अ लिटिल बिट एंड देन पुल इट बैक, एंड दैट वुड वर्क द बेस्ट फॉर यू. बाकी यू साउंड लाइक अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. दिस मैन वुड बी वेरी स्टूपिड टू नॉट शेयर हिज लव एंड हिज इंटरेस्ट विद यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कनिका की तरह कोई भी सवाल है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई बी सो हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस इवन दो आई हैव अ कोल्ड. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RochIe. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं क्यों किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: This is something special.

टूथब्रश भी तो लोनली होता होगा ना, तो पेयर इट अप एक टूथब्रश के साथ एक और टूथब्रश डाल दो, सारा दिन सारी रात अकेला टूथब्रश। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फेंगशुई के हिसाब से अगर आप अपने कमरे और बाथरूम में चीजों को डबल कर देते हो तो इट क्रिएट्स पार्टनर एनर्जी। मैंने अपने सिंगल भाई को यही बात बताई तो वो अपने लिए चार टूथब्रश, चार साबुन, चार पिलोज, चार कुशन्स ले आया। शायद वो चार पार्टनर्स चाहता है या फिर उसकी मैथ बहुत खराब है, पर व्हाटएवर द सिचुएशन इज, द मोर द मैरियर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया दैट विल अट्रैक्ट अ पार्टनर इनटू योर लाइफ एंड यू आर टू लेजी टू डाउनलोड अ डेटिंग ऐप, शायद ये फेंगशुई टिप माइट बी द थिंग दैट हेल्प्स यू। इसे ट्राई करके देखो एंड आई हैव अ फीलिंग आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा ये। एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू बोलना मत भूलना इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से अबाउट लव, जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड्स।

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

0: Mirchi, it's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest countdown of the week. यानी गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s-2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनेक्ट इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनका, एंजॉय।
1: नंबर 10।

0: सारे कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेष को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे, क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: धड़कन है मेरी।
1: बन जा रहे थे आर्टिस्ट का गाना, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
2: कसेट क्लासिक।
1: हमारी कसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
3: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
1: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी, आई वॉन्टेड टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था, ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया। दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील। एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन। वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना। दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gaane ka naam hai Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanek on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gaana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेगा और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग. राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे. गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कंपोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्प्रेरी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर, हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर

0: That was Ur Chale by Last Minute India on our Gaana Spotlight of the Week at RJ Kane ka Instagram par aao and quickly is indie pop quiz ka answer karo. Palash Sen, a very popular independent musician, वो किस independent band का part है? उनके band का नाम आके मुझे बताओ. Palash Sen के band का नाम क्या है? At RJ Kane ka on Instagram पर जल्दी जल्दी आके बताओ. Back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. बंजारे the artist का गाना 24 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. उन्हीं के lyrics, उन्हीं की composition. गाने का नाम है Baron. It's playing right next for you on Gaana number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kaneka. Enjoy.
1: Number 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स, कुछ ऐसे भी गाने होते हैं विच डिजर्व अ स्पेशल शाउट आउट. ऐसे ही गाने के बारे में बात करने वाली हूँ. इट्स कॉल्ड गाने का नाम है बूम शाकलाका. एंड आई एम श्योर ये गाना, ये फ्रेज आपने जरूर सुना है. गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा, बिकॉज इट्स एवरीवेयर. ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है. वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था, पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना. हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है. छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट. कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है, एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट. बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया. उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन. हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है. इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे. पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकलाका. इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस. ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकलाका. अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

The song is a perfect concoction of Krishna, Dhanda Nyoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli baar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप कराए उड़ी उड़ी. दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा. गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1 ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका. एंजॉय. नंबर 2.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कन्हैया लाल की प्रणाम मेरे भक्तों, मेरे भक्तों नहीं कन्हैया के भक्तों, प्रणाम प्रणाम। भाई लागी माँ जी, बच्चों को यहाँ पर साउंड सिस्टम से दूर रखें।

गुड़ खालया गुड़ वाली चा किन पीती नाड़ा किन खिचया खिच के मर किन सीटी।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन. एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे. कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था. शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है. यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है. और आज की मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है. कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है. इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी.
0: नंबर 20.

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑडियंस जब आपके एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊं कि सिर्फ एक्शन ही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूं। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन का एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है, मैं यार करूंगा। आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ Change myself. I have to take a risk.
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नायर ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 15.

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लव वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गेव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे आर ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन। नंबर

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 4।

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट

0: कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
1: जॉन अब्राहम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस दिन के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 2।

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। स्टिल रेनिंग एट नंबर 1, दिस इज तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। So until the next time I meet you here on the Mirchi Top 20, this is Siren, over and out.
1: Siren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

ಪದ ಪದ ಗಮ ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿ ಸಗಮ ಗ ಸಗಮ ಪದ ಪದ ನಿ ಸಾ.

Mirchi. It's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: Oh God, one more email.

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: प्यार, दिस इज प्रिसिला विद यू। सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390, $4,390 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ नहीं आता किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया जाए। आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड के ऊपर कितनी लेबर चार्ज ऐड हो रही है। आइए राज ज्वेल्स की डॉट टीम से कनेक्ट करें। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस, उसके ऊपर कितनी लेबर और क्या एडिशनल चार्जेस के साथ आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग में। राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर जाती है और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलते हैं। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: दैट्स इट फॉर योर गोल्ड रेट का लेटेस्ट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं। लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रात में कपड़े प्रेस करके बैग जमा के सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है ये इंसान जो है ना ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी। हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था, तब बड़ा जोर आता था। लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार। हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीखी ली थी। टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार। और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे। बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार। मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती है, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान। दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुने आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नो एंट्री एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो नो एंट्री था, लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है। लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक। ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिफ से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था। अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन। और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश्ड दैट स्पॉट अवे। हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं। मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े है ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जगल किया। मतलब कभी वो यहाँ होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इनफैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो हैं वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
1: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
2: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था दैट वाज सपोज्ड टू बी प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा, लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहे थे, यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए, एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: त्रिदेव का ये गाना।
3: ओए

0: जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यार सारा, दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.